हर कैप्चा के लिए आपके पास 40 सेकंड्स होंगे और आपको सवाल के हिसाब से फोटो मार्क और लेवल करना है. आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा टाइम ओवर होने पर, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे. ओके okay?

0: स्कूल पे असर है।
1: किसका?
0: टीचर पे जिन चढ़ गया।
1: स्कूल में जिन रह सकते हैं?
2: बड़ी बातें चल रही हैं कि स्कूल टीचर बीमार है।
3: बिल्कुल होते हैं।
4: एक के बाद एक बीमार हो गया, उन्होंने भी काम रोक दिया।
1: किसी ने उन जनों को भगाने की कोशिश नहीं की?
4: क्या पता किया हो नहीं किया हो, लेकिन वो बिल्डिंग अभी तक खंडहर पड़ा है।
5: सब कहते हैं कि तालीम एक बुनियादी हक है, मगर मैं मानता हूं ये एक इस्तेहकाक है।

0: 26. September um 17 Uhr im Kino vom Deutschen Filmmuseum. Und hier hören wir auch noch mal kurz in den Trailer rein.
1: Joke suna koi.
2: Ek machhar nu murghi naal pyar ho gaya. Machhar to murghi ne bhakti ki thi. Te machhar bird flu to mar gaya, te murghi dengue to. Puch kyun?
1: Kyun?
2: Kyunki mohabbat da anjaam maut hai. Achha nahi laga?
1: Bilkul nahi.
3: नचे किसी थिएटर च के नहीं
4: गम की
5: थिएटर मैनेजर
6: बीबा किधरे और जाके रोला पाला
3: बीबा नहीं मैडम कहना मैंने
7: बुद्धि हथों बाहर नहीं होती जा रही हूं ए भी बुद्धि लगेगी पोस्टर के बीच
3: तेरी मोटी बुद्धि तो बाद की जगह बच्चे कितने मैं अपनी बुद्धि लावा
7: चल लाइक कर दी
3: नहीं
7: लगनी